Ana tripulani tõnu, edita sagale sõn saan. Kaušik, sunu, vanda ehe maan, kurtile kaale, vasa lijakule kaale, tume hata kahu jood, jahahu vaara, kahita taapavale roosu hamara. Suure samade kare nii kare hi, kahine janaava hi aap, nitya maane rena paayedi, kaayare kare hi pralaap. परशु सहित बर नाम तुम्हार कहु सुभाहु न कुल ही प्रसंसी कालहु डरहि न रण रघुवंशी विप्र वंश के असि प्रभुताई अभय होई जो तुमहि डराई सुनि विदु गुण बचन रघुपति के उखरे पटल पर